सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लग न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई।

अंतर्जामी सच्चे पातशाह जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी हो, आप जी के भावन स्थान सतखंड दरबार दी भरते हुए आप जी के भी बाणी का सत्कार करते हुए बेअंत गुरमुखा प्यारियां वालों शुभ भेट माया हाजिर हुई है। सच्चे पातशाह नाम दान सिखे दान की बख्शिश करनी, गुरसिखे जीवन बख्शो नाम दे आरोप समूह सप्ताह ने मनोकामनाएं पूर्ण करने, नाम माणी नाल प्यार चुनाद्रिदर प्रवान करनी, यात्रा सफली करनी।

0: राज करेगा खालसा आके रह न कोए खुआर होए सब लेंगे बचे सुन दोहे दोहरा उठ गए सबा मले छके कर कूड़ा पासार डंका बाजे फने काले कलंक उतार तत्र तत्र प्रवर्ती तत्र तत्र भुगते सोया भव सुभंग सर्वदा सब जुगते दुकालं प्रणास दयालं स्वरूपे सदा संगे आप हलंग दिवते
1: एक गुप्त विष्णु आपका जनान गुरु गोविंद सिंह जी
0: श्री काल गुरु के सहाय।

जी गुरु गरीब निवास यंत्र जामे सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान दी हाजरियां भरते हुए गुरु की संगत वालों गुरबाणी के शब्द कीर्तन सत्कार करते हुए बेनत मैं अरदास कराई पातशाह सतगुरु आप जी नाम जन जन कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी देर उक्ता दे नाम दात कारज यात्रा

करके बड़ा इहदा नाम प्रसिद्ध सी आले दुआले दे इलाके विच जाणिया जांदा सी। ये जंग जिथे हो रहा है ये पीर दी कबर इस किले दे लागे सी। कहिंदे उधर फिर कहिंदे जिहड़े अंदरों जिहड़े तुरक लोग है ना वो की करदे है कि पान नाम है पत्थरां दा। कहिंदे सिंघां दे उपर गुरु पंथ खालसे दे उपर ना पत्थर मार मार के ते वार करना करदे चोटिल करना करदे जख्मी करना चाहुंदे है। देखो पत्थर भी एक बड़ा वड्डा हथियार है। ये भी समा पाउण दे उपर लोड़ पैण दे उपर बड़ा घातक हथियार सिद्ध होना करदा है। इसके वास्ते कहिंदे इन्हां ने किले दे अंदर ना बड़े रोड़े पत्थर जमा करके रखे है ते रोड़े पत्थर अंदरों चलाउंदे

मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपतास है मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए धर्ग जीव धर्ग जीवास। जिन हर जिन सतगुर

सोई थीसी जो तू देह सोई हों पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनू कृपा करह तन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनू तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया।

मिल साध संगत भज केवल नाम, शरण जाम लाग भव जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संजम।

चौपाई सम सत्र सहस भणी जय अर्ध सहस गुण तीन कहे जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग वास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो ए कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल हुई आद ब्याह छुए सकै न कोई।

सत्संग जी गुरु साहब जी का लंगर तैयार है, प्रसादा छक कर गुरु महाराज आंख से प्राप्त करो।

कोड़ी साहब हर दयाल कृपा करेता सहकार करायसी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुकम बनायसी हुकम ने हो प्रमाण ता कसम का मिल पैसे कसम भावे सो करे मन चंदिया।